0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वाचिंग प्राइम टाइम विद रेशा सेगर
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
3: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot.
4: The sport may change. The champion's instinct doesn't.
5: It's not just about the game.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

to be are the family of Bhagwan Ram, and the name Venkat Raman is very much used in the entire southern India. But unfortunately, those whose whole sole agenda is to divide India, Britishers use the concept of divide and rule. But Congress concept is different. Divide the Hindus for the rule of the Muslims. Divide Hindus for the Muslim rule. And that's why Rahul Gandhi has categorically and deliberately has chosen a constituency which is having a Muslim majority. And in this context, I would like to say that if they want to divide the gods of Hindu society, I think the Semitic thought process have engraved their mind in such a way. It is the Semitic process ki ek Bhagwan ko manenge, dusre ko nahi. Agar aap masjid mein jayenge to church mein nahi ja sakte, aur church mein jayenge to masjid mein nahi ja sakte. Magar hamare yahan koi samasya nahi hai. आप मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, बौद्ध विहार में जाइए, जैन विहार में जाइए, दरगाह पे भी चले जाते हैं और चर्च में भी चले जाते हैं, तो हिंदू धर्म से बाहर नहीं होते. इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के ऊपर लगता है इस्लामिक प्रभाव मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते चलाते इस सीमा तक पैबस्त हो गया है कि वो अब हिंदू धर्म के भगवानों को भी सीमेटिक धर्मों यानी इस्लामिक और क्रिश्चियन नजरिए से देखने लगे. और अब मैं इस विषय का शास्त्रीय जवाब देता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के एक बार राहुल गांधी बोले जरूर थे कि मैं हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए वेद पुराण उपनिषद पढ़ रहा हूं. उन्होंने पढ़े बढ़े तो कुछ होंगे नहीं, तो मतलब बिल्कुल पक्का ही पता है. उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जो है वो गरीबों के देवता है और भगवान राम अमीरों के देवता है. ऐसा विचित्र उदाहरण देने वाला विलक्षण बुद्धि बालक ही हो सकता है या अरब दिमागी नक्सल हो सकता है. अब मैं बताना चाहता हूं, कुबेर हमारे यहां धन के अधिपति देवता हैं और शिव महापुराण में भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कुबेर मेरे पुत्र के समान है. अब बताओ भाई, अब आइए भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिसकी पूरी नगरी सोने की थी, वो था रावण, सोने की लंका. और अगर शिव तांडव स्त्रोत आप सुनते हो तो उसके अंतिम छंद में कहा गया है कि जो इसका नित्य प्रति भजन करता है, वो रावण रचित शिव तांडव स्त्रोत है. उसमें कहते हैं भगवान शिव इसको हाथी घोड़ों से मणिभूषणों से युक्त निरंतर रहने वाली संपत्ति देते हैं. और भगवान राम के भक्त कौन है? हनुमान जी, वनवासी, गिरिवासी, ठीक, जामवंत जी, माता शबरी, निषाद राजगुह. इसीलिए हम, और यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं, संपूर्ण रामचरितमानस भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं और भगवान शंकर स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान ने. यानी सहस्र विष्णु के नाम लेने के बाद भी मैं भी राम का नाम का जप करता हूं, ये कौन कह रहा? भगवान शंकर. और सहस्र विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलता है वो एक राम का नाम लेने को मिलता है. और भगवान राम क्या कह रहे हैं? जब लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं रामस्य ईश्वरः यः सः रामेश्वरम. जो भगवान राम का ईश्वर है वह रामेश्वरम है, नाम भी रामेश्वरम ही है. अर्थात यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग इसमें विभाजन की दृष्टि से देखते हैं उन्हें हिंदू धर्म का क ख ग भी नहीं पता है, या फिर वो उस विभाजनकारी मानसिकता के टूल बने हुए हैं. और फिर हां यह जरूर है, जो राम विरोधी होकर भगवान शिव को भजता है वो रावण जैसा ही होता है. और यह बात भी मैं सब प्रमाण कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में यह लिखा है कि भगवान राम और माता सीता कौन है. उनके लिए लिखा है सीता जी के लिए अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी. यही अनादि शक्ति है जो भगवान शंकर के
अर्धांग में सदैव

0: विराजमान रहती हैं। और भगवान राम ने स्वयं बोला है, कांग्रेसियों को बुरा लगेगा जो मैंने बात बोली है, यदि राम के प्रति विरोध करके कोई भगवान शंकर का की भक्ति का दावा करता है तो वो उसी वृत्ति का प्रतीक होता है जिस वृत्ति के प्रतीक राक्षस होते हैं। इसका प्रमाण दे रहा हूं, भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भर घोर नरक मावास। अर्थात यदि कोई शंकर जी को प्रिय कह के मेरे से द्रोह करता है और मेरे को प्रिय कह के भगवान शंकर से द्रोह करता है तो वो एक कल्प, वैसे इनकी तो कैलकुलेशन में तो 7,000 साल पहले दुनिया बनी थी, 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी, वैसे कल्प 30 करोड़ साल से ऊपर का होता है, वो एक कल्प तक, ब्रह्मा जी के कल्प तक, वो तो कई ट्रिलियन ईयर्स का होता है, उससे भी ज्यादा, तब तक वो नरक में वास करते हैं। तो मुझे लगता है
1: Sudhanshu Trivedi of the BJP speaking on the matter, and this is in regard to the comments that were made by Revanth Reddy, drawing parallels to Ravan and saying that, you know, people who talk in such a manner don't know ABC about religion, and that is what has been said by the BJP in this regard. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. To stay with us.
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to Watch and Prime 5 with me, Rachel Sager. What's actually how?
2: The show that sets the prime time agenda.
3: We'll be deep diving into this topic to tell you what's actually.
2: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: यू वॉच अस, व्यूअर यू ट्रस्ट अस, एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। वोट फॉर एनडीटीवी एट द ITA अवार्ड्स 2026। यू हैव गॉट दैट पावर। Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
8: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
9: A healthier India doesn't happen in a day.
10: It starts with the health choices that we make every day.
11: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे
12: और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
13: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
7: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
14: One informed choice और एक healthier action.
13: Giving better health in more hands every day.

0: ongoing controversy against the Election Commission of India, what we have seen that from the streets of the national capital to the Supreme Court to the Parliament, what we have seen that the India Alliance members have been basically imposing and saying that there's involvement of Chief Election Commission, and that's why they have been demanding his resignation. Behind me, you can see this is one such poster at roundabout of the Tansen Mark, where what we are seeing that here it's written India Alliance ka doglapan, which simply means the hypocrisy of the India Alliance. And the another line which is written over there is Jeete to ECI ko tali and hare to ECI ko gali. So when they win, they praise Election Commission of India, and when they lose, they start basically criticizing the Election Commission of India. So posters like these have been found at multiple places, including Patel Chowk roundabout, including Rail Bhavan roundabout, including Limeridian roundabout, Mandi House roundabout. So these are the several locations where what we have seen that such kind of posters and hoardings have been put in place. Here you can see there's another poster where it's written Jeet ka sehra apne naam, hare to chunav aayog pe ilzam. So such kind of posters have been erected and posted, affixed over here, and right now you can see with the help of visuals that Rahul Gandhi's visual photo has also been put in place. So posters like these can also be seen. I would like to move a little bit forward on this very roundabout and show you the visual from here. So when they win, there's another poster which basically describes when they win and when they lose.
1: Meeting बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको भी जाना था. उद्धव जी ने भी तैयारी की थी, लेकिन आपको मालूम है कि अभी दो दिन में ज्ञानेश कुमार की स्थिति के लिए हमारा भी मुंबई में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं. दिल्ली में जाने आने में दो दिन लगते हैं. अभी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज ठाकरे जी के साथ, बाद में हम तैयारी करेंगे मोर्चा और आंदोलन की. तो उद्धव जी, हम सभी लोग 3 बजे के बाद इंडिया ब्लॉक के बैठक में ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम उसमें सहभागी हो. मुंबई में भी है 2 अक्टूबर का, डेफिनेटली रहेंगे. उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा अभिजीत दिपके के आंदोलन को समर्थन दिया है.
2: कि इंडिया गठबंधन का इससे पहले भी ममता बनर्जी बहुत बार घुसे हैं, बहुत बार उससे निकल भी आए हैं. कभी बैठक गए हैं, कभी बैठक से बाहर गए नहीं, भाग के चले आए. तो उनको ऐसे हाइड एंड सीक चल रहा है. अब क्या होगा उसमें, डूबने वाला ही है इंडिया गठबंधन. तो एक आदमी लेके डूबेगा, राहुल जी पहले लेके डूब रहे थे, अब ममता बनर्जी राहुल सब मिलके डूबेंगे.
3: मैं कहता हूँ सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ, कांग्रेस कालियानाथ, ये तीनों पार्टियां बैठक में जाएं या ना जाएं, तीनों भाजपा की विरोधी पार्टियां, ये तीनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे 2027 का चुनाव, तब भी हारेंगे. अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे. तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी. इसलिए ये किस बैठक में जा रहे हैं, किस बैठक में नहीं जा रहे, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं.
4: सी वी आर टुगेदर आइडियोलॉजिकली, वी स्टैंड विद द सिंगल, वी ऑल स्टैंड टुगेदर. मे बी वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, दैट इज डिफरेंट. बट इन द पार्लियामेंट वी विल अपोज, वी विल सपोर्ट हूएवर ब्रिंग्स रिमूवल मोशन ऑन ज्ञानेश कुमार, because that our leader had issued a statement. In many of the issues where other opposition parties oppose BJP, we will also stand by them. That doesn't mean that

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: the manner in which the BJP is now looting the state of West Bengal, and also in fact in a way it is an autocratic government there, and that she is not able to move out of her house because of the worsening conditions is what she claims. So all in all, Mamata Banerjee not just made her point about the SIR and Gyanesh Kumar, where she called him as Vanish Kumar, but she also made sure that she raises the issue of the state of West Bengal as well, about the kind of problems she alleged she is facing over there and her party as well. Now needs to be seen that what further discussions are being continued in this entire meeting, but we are getting you all minute to minute inside details. Vedika.
1: All right, Tejshree, thanks for those details. Tejshree will be bringing you all the live updates on that India bloc meeting. Remember, the leaders are holding a key meeting in the national capital over SIR and the issue and the controversy surrounding the chief election commissioner. The Congress has now put out 6 demands in the meeting, including the pre-SIR electoral roll to be used for future elections, the protection of eligible voters from exclusion, voting through ballots instead of EVMs, and institutional accountability. Mamata Banerjee, Supriya Sule, Mehbooba Mufti, Umar Abdullah attending the meet along with Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. The opposition leaders have slammed the CEC, Gyanesh Kumar, highlighting the entire SIR exercise. Mamata Banerjee, as you just heard from Tejshree, has said it was carried out in a botched up manner. Also, left parties, we're being told, will be pressuring the Congress to open talks with the DMK, whereas the DMK has made it clear that they are not part of the India bloc, but they will support the issue if it comes to Parliament. The BJP has, of course, slammed the Congress over the absence of some key leaders from the allies and the partners of this alliance, and said that India bloc is in shambles.
2: The election commission is totally wrong. The SIR process has been doubted by the 2 election commissioners, and they have pointed out that there were 14 disagreements between the election commissioners and the chief election commissioner. Too many mistakes have been pointed out in the past in Madhavpura in Karnataka, Anand in Maharashtra, in Haryana, in Maharashtra. Too many mistakes have been pointed out in the past. The SIR process is deeply flawed. If it was not flawed, why should the election commission meet again day before yesterday and change the process?
3: सबसे खुलासा हुआ है, 2 इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के ये बैठक है। आप देखिएगा, जितने भी चुनाव हुए हैं ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर को बचाने के लिए, ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए पहले कानून बदल दिए जाते हैं। पहले चयन प्रक्रिया जो होती है, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद जो है, जो वोटिंग का जो रिकॉर्ड रखना चाहिए, जो कि 45 दिन का कर दिया जाता है, पहले 1 साल हुआ करता था, तो एविडेंस को मिटाना। और आप देखिएगा, जब पोल होता है, तो पोल जब ख़त्म होता है उस समय परसेंटेज कुछ और बताते हैं, अगले दिन कुछ और बताते हैं, तीसरे दिन कुछ और बताते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से ये बढ़ाते हैं। तो पहले से ही हम लोग ये बात को बोलते रहे
4: कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसे में विचलित होकर के टारगेट तो हमारे नेता को करेंगे, हम उससे विचलित नहीं होते, और उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम जो कहते हैं तथ्यों के साथ कहते हैं। मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, चाहे उपचुनाव में हो, चाहे जनरल चुनाव में हो, इसी की हमारे पास सारी डिटेल है कहाँ क्या हुआ। आपको पता नहीं, उपचुनाव में चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे आपका मीरापुर हो, सबको फर्जी लाल कार्ड दे दिए थे, वोट पुलिस वाले भी डाल देते, बंदूक लेकर के, गन उसके हाथ में थी, पिस्टल या जो भी कुछ रहा होगा, और वो औरतों के खिलाफ जो वोट डालने जा रही थी उन्हें धमका करके भगा रहा था कि आप चले।
5: वी वांट ज्ञानेश कुमार टू बी रिमूव्ड, दैट इन दैट वे वी एज कांग्रेस एंड डीएमके आर इन द सेम लाइंस, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया ब्लॉक। So there are other parties also who are skipping the meeting, like Aam Aadmi and...

0: Zali, thanks for bringing us up to speed with the latest. This, of course, in the run-up to the elections in the state as well. All eyes will be on that interrogation. Well, the BJP has put the fight against drugs at the center of its campaign for Punjab's 2027 assembly polls, with Home Minister Amit Shah leading the anti-drug fight from Jalandhar today. Amit Shah is all set to address the concluding rally of BJP's Nasha Mukt Punjab Yatra that covered all 117 assembly constituencies and nearly 4,000 kilometers. The BJP says today's rally at Paragpur will be its largest ever in the state. Families who have lost relatives to drugs are expected to attend. The location also matters. Jalandhar is at the heart of the Doab region, which accounts for 23 of Punjab's 117 seats. Moving on, a day after Revanth Reddy's remark on Lord Ram and Shiva, BJP has hit out at him. BJP has called out the Telangana Chief Minister's remark and said that it is a bid of the Congress to divide the Hindus. This is what the BJP has said. BJP also took the Muslim League jibe at the Congress yet again. Revanth Reddy, while taking a swipe at the BJP, had said that the party had stolen Lord Ram and claimed that the Congress leaders are devotees of Lord Shiva. The Telangana Chief Minister also drew a contrast between the two gods, Ram and Shiva, describing Shiva as the god of the poor and Ram as the god of the rich. He further alleged that the BJP represents the interests of the rich and compared the SIR struggle to the slogan, Simon, go back.
1: Telangana ki Mukhyamantri Shri Revanth Reddy, jo Jubilee Hill ke chunav mein Congress ke dil ka udghosh kar chuke hain, Congress matlab Musalman, Musalman matlab Congress. यही रेड्डी साहब बोले थे बिहार का डीएनए और तेलंगाना के डीएनए के बारे में. फिर उसके बाद भाषा पे विभाजित करना है, उसके बाद जाति में विभाजित करना है, और उसके बाद महिला और पुरुष में विभाजित करना है. स्मैश पैट्रियार्की सिर्फ हिंदू समाज के लिए. और जैसे ही केरल का ग्रैंड मुफ्ती बोल देता है कि महिलाओं को तो तिजोरी में नेकलेस की तरह रखना चाहिए, तो स्मैश पैट्रियार्की पे दहाड़ने चिंगाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है. अब भगवानों को विभाजित करने की सीमा तक आ गए हैं. मुझे लगता है यह भारत में राजनीति करने के सबसे निकृष्टतम उदाहरणों में से एक है. नहीं है रेवंत रेड्डी जी को या उसे कहलवाया जा रहा है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ की धरती से सांसद एक नहीं अनेक बार उनके हर हर महादेव करते हुए वीडियो है. मगर राहुल गांधी जी का हर हर महादेव करते हुए वीडियो शायद आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा. यह है परम शिव भक्त का चोला और अंदर से मार्क्स और मैकाली बोला. आई वुड लाइक टू आस्क श्री रेवंत रेड्डी एंड ऑल अदर कांग्रेस लीडर्स, देयर इज अ वेरी फेमस फ्रेज व्हिच इज यूज्ड दैट भगवान वेंकटेश इज कंसीडर्ड टू बी of the family of Bhagwan Ram, and the name Venkat Raman is very much used in the entire southern India. But unfortunately, whose whole sole agenda is to divide India, Britishers use the concept of divide and rule, but Congress concept is different. Divide the Hindus for the rule of the Muslims. Divide Hindus for the Muslim rule. And that's why Rahul Gandhi has categorically and deliberately has chosen a constituency which is having a Muslim majority.
0: And here's a controversial comment made by the Telangana Chief Minister Revanth Reddy.
2: Very simple. We are Dravidians, we are Aryans. We are Shiv Ji ke bhakt hai, ya Ram Ji ke bhakt hai. So Ram Ji ko BJP ne
3: कैप्चर कर लिया,
2: चोरी किए. तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट. तो क्यों हरे हरे महादेव क्यों नहीं बोलते? मोदी जी जय श्री राम बोलते कभी भी? देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हरे महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है. हम हरे हरे महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है. गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी. तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है. तो इट्स अ सिंपल फंडा.
0: A tattoo meant

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: ATV also spoke to the woman. She claims that she was also at fault and she has settled the matter with the driver. But however, was this entire physical assault and this altercation really necessary over just a cancellation is the question that really comes up. We also spoke to Brinda Adige, a women's rights activist, a little while ago. Let's listen to what she said.
1: There has to be responses also coming in quickly from whoever the aggregates are. But we are looking over here, there is an auto driver. This man assumes entitlement that he can do this with a woman. I'm sure he wouldn't have done this with another man. He would have probably, some profanities would have been shouted, screamed, and they would have gone their different ways. But this auto driver assuming that he can raise his hand, be violent with a customer or a woman, just to show that nothing is going to happen to me, nobody is going to do anything to me. Even if the customer, the lady, the women would have reported, how quickly do the aggregate responsibility management immediately respond? I have reported and nothing has happened. So we need to hold the aggregates responsible for this kind of behavior by the drivers and of course the local laws.
0: Well, that's as far as the news from Karnataka is concerned. Now over to my colleague Ashish from Hyderabad. He takes you through the developments there.
2: Thank you, Deepak. In fact, we are continuously reporting about the comment made by Chief Minister Revant Reddy in Delhi. He made the comment over North versus South debate, delimitation debate, and that led to a political controversy. During that particular event in New Delhi, Chief Minister Revant Reddy, while participating in a media debate, in fact, he has said that Lord Ram is God of rich, while Lord Shiva is God of poor. He called himself a Dravidian, the southern states people, a Dravidian people, while he said that all those who are north of India, northern state people, are of Aryan race, and that also got and attracted sharp criticism of BJP. Now, BJP yet again has hit back on Revant Reddy. This time, Sidhanshu Trivedi, top BJP leader, he spoke against Revant Reddy and Congress Party in his media conference in New Delhi. Listen into what Sudhanshu Trivedi has to say over Revant Reddy's comment.
3: Telangana ke Mukhyamantri Shri Revant Reddy, jo Jubilee Hill ke chunav mein Congress ke dil ka udghosh kar chuke hain, Congress matlab Musalman, Musalman matlab Congress. Yahi Reddy saab bole the Bihar ka DNA aur Telangana ke DNA ke bare mein. Fir uske baad bhasha pe vibhajit karna hai. Uske baad jati mein vibhajit karna hai. और उसके बाद महिला और पुरुष में विभाजित करना है, स्मैश पैट्रियार्की, सिर्फ हिंदू समाज के लिए. और जैसे ही केरल का ग्रैंड मुफ्ती बोल देता है कि महिलाओं को तो तिजोरी में नेकलेस की तरह रखना चाहिए, तो स्मैश पैट्रियार्की पे दहाड़ने चिंगाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है. अब भगवानों को विभाजित करने की सीमा तक आ गए हैं. मुझे लगता है यह भारत में राजनीति करने के सबसे निकृष्टतम उदाहरणों में से एक है.
2: Clearly, Sudhanshu Trivedi is alleging that Congress party, including Revant Reddy, he is appeasing one particular community. Muslim community, of course, is the he is hinting about. Listening to what Revant Reddy actually had said in that media conference in New Delhi.
4: Very simple. We are Dravidians, we are Aryans. We are Shiv Ji and Ram Ji. So, Ram Ji, BJP ne
5: कब्जे कर लिया,
4: चोरी किए. तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट. तो क्यों हरे हर महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते. कभी भी देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हर महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है. हम हरे हर महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है. गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी. तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है. तो इट्स अ सिंपल फंडा.
2: So clearly this is not dying, this politics over Revant Reddy comment is not dying. In fact, Chief Minister is today in Srisila and we expect that he will further react over this controversy. Meanwhile, we'll go to Kerala where my colleague Ashwin will tell you stories related to Kerala.
6: Well, thank you, Ashish. The story from Kerala, one thing that has come to fore is the Congress District Committee office in Thiruvananthapuram was attacked. And in fact, stones were hurled at this office at multiple locations. Now, interestingly, this incident has happened late night, somewhere after midnight. And this happened right in the middle of the city, just adjacent to the Reserve Bank of India office, where the District Congress Committee office is there. The stone has been hurled and investigation is going on in this matter. Meanwhile, multiple CCTV footages, in fact, the CCTV cameras, which are installed at the premises by the Congress party, none of them seems to be working. But at the same time, Congress has come forward to allege that the BJP is behind this heinous act. In fact, a large number of Congress workers had gathered while the investigation had begun today early morning when they found out that this attack has happened in this office. Stones were hurled, a forensic team had come, a police has registered, police has registered a complaint and the investigation had begun. In this stage, a large number of Congress workers had come over there and they are also stating that the BJP is behind it. This comes in the backdrop of various interesting problems that is happening between the Congress and BJP ever since black flag was shown while Amit Shah was in Kerala, in Kollam, and he had come to the state at, by the Congress, Youth Congress, and after which there has been a tension between the BJP and Congress. Now the Congress alleging that BJP is behind it. Let's hear the voices from the Congress party with regard to this.
7: We have Matthew Kurunadan, MLA, with us. Let's hear from him. Who do you suspect is behind this kind of heinous attack against the DCC? Yeah.
8: It's very disgusting and unfortunate that such an attack is carried out in the late midnight hours on a party office, DCC office. This is not part of political culture in Kerala. So now what we suspect that this BJP goons who are carried out this mischief, and police is investigating the same, and they will book those who have done the mischief under law. That's what we expected.
7: And secondly, we are getting reports that none of these CCTV cameras are working. So is there some kind of a flaw? Is that a reason?
8: No, that we need to check. I mean, I just had a word with the police authorities. They said they are trying to gather evidence from across. Like, I mean, some of the CCTV cameras were not working, but other CCTV cameras were working. So, and they are looking at and they are investigating.
9: जल्द से जल्द उसको निपटाए और लोगों को न्याय मिले, ये हमारा 6 मुद्दों का एक हमने सभी मिलकर तय किया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको धन्यवाद, थैंक यू सबको। सवाल क्या है यही सब? यस यस यस ये मुद्दा देखिए, ये देखिए, सभी सहमत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा यार, देखो देखो, आपने पहले पूछा ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर का, 100% सभी इंडिया अलायंस के लोग माने हैं, और मानने का तो नहीं, सभी ने फोर्स किया है, और ये हम चाहते हैं हर इलेक्शन बैलेट पेपर में ही हो। और ये अब चोरी की सरकार बैठी है ना, ये चोरी की सरकार जो जो कानून किए हैं वो कानून भी रद्द करना चाहिए, अगर वो रद्द नहीं करेंगे जब हम आइंदा आएंगे वो पूरे रद्द कर देंगे।
10: साथियों, अभी सवाल नहीं, अभी सवाल नहीं, अभी प्रक्रिया चलने दीजिए प्रेस वार्ता की। इस सिलसिले में अब ममता बनर्जी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो बात,
11: हमारा इंडियन अलायंस जो है एक कट्ट है, एक साथ में है, एंड वी आर वेरी मच टुगेदर। आज जो बिग स्कैम हुआ है, इट्स ए स्कैंडलस मैटर, एंड इसके लिए जनभोग रहा है। जो वोट चोरी का बात बिहार में कह गया था राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने, जो वोट चोरी करके बीजेपी 26 में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, हरियाणा में जीता, बिहार में जीता, बंगाल में लूट किया पूरा, आपको पता है हम लोगों को लेके आया था इधर में, इलेक्शन कमीशन के पास में गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, सब दर्जा खटखटाया, लेकिन अभी तो खुला खुला हो गया कि भैनिश कुमार चोर है, डाकू है, वोट चोरी किया, ईवीएम मशीन जला दिया, ईवीएम मशीन हाईजैकिंग किया, काउंटिंग रिगिंग किया, क्या नहीं किया है, इसके लिए ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली, ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली, ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली, लेट अस सेव द डेमोक्रेसी एंड लेट द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, द वोटिंग राइट्स, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू द पीपल, इफ पीपुल्स आर नॉट वोट voting, if their voting are been looted and cheated, then where the country will go? So our request, it is not request or demand, our forceful demand, Dhanesh Kumar agar nahi remove hoga, to ye andolan bahut der dur par ja sakta hai, mitti se aasman tak jayega, chaand suraj tak jayega, ye hum logo ko ek saath mein ladke dekhna hai. वोट लूट किया ना, चोरी किया, क्यों मशीन जलाया, ईवीएम मशीन क्यों जलाया, क्यों ओसिवा खन्ना कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर कहां से ले आया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको देके पूरा लूट कर लिया, हमारा बंगाल में खाली 92 लाख लूट किया, पूरा हिंदुस्तान में 13 करोड़ से ज्यादा लूट किया और उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के ईआरओ को पूरा डेडलॉक कर दिया, पूरा सिस्टम को खतरा कर दिया, इसको रहने का एक मिनट भी जरूरत नहीं है, अभी से अभी इसको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम जनता को भी विनती करते हैं, जो प्रोग्राम लिया है इंडियन अलायंस में खड़गे जी बताया उसमें हम लोग सब शामिल होंगे, हम लोगों को तो घर से निकालने नहीं देता है, हम देखते हैं, हम लोग को निकालने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे, हम राहुल जी को हम खड़गे जी को बोलेंगे, हम और ज्यादा बोलने नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकतंत्र वापस आएंगे और डेमोक्रेसी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करेंगे, ये हमारा वादा है, इसके लिए जान अगर खतरे में जाएगा, वी आर रेडी टू डू इट, ओनली वी वॉन्ट योर सपोर्ट, ऑल द एनजीओस, द स्टूडेंट्स, द यूथ, द महिला, द गर्ल चाइल्ड, माई जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, ऑल वी वॉन्ट योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच.
9: दो मिनट राहुल जी, नहीं मैंने बोला, आपका बोलना, आप एलओपी है, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, तो आपका बोलना अलग है, मेरा बोलना अलग है, आखिरी बस इसके बाद खत्म करेंगे, आप बोलिए प्लीज.
12: थैंक यू खड़गे जी, नहीं काफी अच्छी चर्चा हुई, मेन इशू वोट की जो चोरी हुई है, सब पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, वी आर गोइंग टू इंश्योर. This is personal commitment of all India leaders. We are going to ensure that the people who have destroyed Indian democracy are punished. Doesn't matter how senior they are, who they are, Indian democracy is bigger than every single person in this country. So this is the discussion that was held. There was also a feeling in the room that the opposition has been quite successful in putting across to the people of India that elections are stolen, that Narendra Modi, Amit Shah have destroyed democracy, and there is a new sense of resistance, particularly among young people, that what is going on in India is wrong and needs to be stopped. Again, I also mentioned to all the opposition leaders, that

आजादी मिली, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए कोई एक सूबे ने अगर सबसे ज्यादा बलिदान दिया है तो मेरे पंजाब के सूबे ने दिया है। पंजाब के सूबे मैं पंजाब की वो वीर माताओं को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, इंडस्ट्री के मुद्दे हैं, कानून और व्यवस्था के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे। और आज यहां से मैं पंजाब की माताओं को और पंजाब के युवा को वादा कर जाता हूं, इस चुनाव में भाजपा का समर्थन करिए, कमल फूल पर वोट डालिए। 31 दिसंबर 2029 से पहले हम पंजाब को चट्टे के व्यापार से मुक्त कर देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पठानकोट से यात्रा शुरू की। 13 दिन 4000 किलोमीटर 117 विधानसभाएं घूमकर आज वो यात्रा यहां समाप्त हो रही है। और मित्रों, जब मैं कहता हूं कि हम 31 दिसंबर 29 को पंजाब को चट्टा मुक्त कर देंगे, मुझे मालूम है एक केजरीवाल एंड कंपनी मेरे पीछे क्या कहने वाली है। मैं पंजाब की जनता को बताना चाहता हूं, हमने जो कहा है वो कर दिखाया है। कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। 50 साल पुरानी नक्सल समस्या को तिथि देकर समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद को भी समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करा। और अब बारी है चट्टा मुक्त पंजाब की। मैं फिर से एक बार पंजाब के युवाओं को और विशेषकर माताओं को कहने आया हूं, 31 दिसंबर 2029 के बाद आपके बच्चों को चट्टा उपलब्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहां पर

आवा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती हैं। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है ऐसे परिवार को मिलकर आया हूं। एक मां अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है, इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। और इनको शर्म नहीं आती। जो नशे में धूत होकर खुद गुरुओं का ही अपमान ना करे, वो चट्टे से पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है, पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये आप पार्टी पंजाब को नशा मुक्त कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पंजाब को नशे से मुक्त कर सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है, देश भर में हमने नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया। मैं आज कुछ आंकड़े कहने आया हूं, आज कुछ आंकड़े कहने आया हूं। 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल में देश भर में 26 लाख किलो चट्टा पकड़ा गया। और मोदी जी की सरकार आई 14 से 24 में 26 लाख किलो की जगह 1,20,00,000 नशा पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी ने 40,000 करोड़ के नशे का माल जब्त किया था। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 करोड़ की जगह 1,90,000 करोड़ का माल जब्त, 5 गुना। अब जलंधर वाले पूछेंगे तो पंजाब में क्यों नहीं होता था, पंजाब में क्यों नहीं होता है? पंजाब में एक बार ये निकम्मी सरकार को हटा दो, 2 ही साल में चट्टे को हम समाप्त कर देंगे मित्रों, समाप्त कर देंगे। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है, युवाओं को मौत के घाट उतारता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। मित्रों, आज पंजाब की आर्थिक व्यवस्था बड़ी बदहाल है। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का एक के बाद एक घपले हो रहे हैं। मोगा आउटडोर मीडिया विज्ञापन घोटाला, अमृतसर स्मार्ट सिटी घोटाला, जालंधर स्मार्ट सिटी घोटाला, बरनाला ट्रक यूनियन भूमि घोटाला, पंचायत फंड घोटाला, आंगेवाड़ी पोषण पंजीरी का घोटाला, हर महीने 40 करोड़ से ज्यादा उगाही का खर्चा और सालाना 785 करोड़ की विज्ञापनों का खर्चा। मैं आज
भगवंत मान को पूछने आया हूं।

भैया भगवान मान, आपके वादों का क्या हुआ? 25 लाख नई नौकरी देने वाले थे, 1.25 लाख लोगों को खाली जगहों पे नियुक्त करने वाले थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 16,000 पिंड क्लिनिक स्थापित करने थे, केवल 1200 बनाए। विधवा पेंशन 2500 करने वाले थे, नहीं किया। 16 मेडिकल कॉलेज बनाने वाले थे, नहीं बनाया। खनन की आय सालाना 20,000 करोड़ बढ़ाने वाले थे और कम कर दी। सभी फसलों पर एमएसपी देने वाले थे, आपने तो नहीं दिया। हरियाणा ने सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम पूरा कर दिया। और सिख विरोधी दंगों में 5 लाख की अतिरिक्त सहायता देनी थी, 5 रुपया भी नहीं दिया। और मैं आज भगवंत मान को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये कुछ न करने के बावजूद अगर नशा मुक्त पंजाब बनाते तो पंजाब की जनता आपको माफ कर देती, मगर आपने तो नशा मुक्त पंजाब का वादा कर नशे के व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी फिर से औद्योगिक क्षेत्र में पंजाब को 1 से 5 में लाने का वादा करती है। हम किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, हम पंजाब की वित्तीय हालत को ठीक भी करेंगे, युवाओं को रोजगारी देंगे। मगर ये किसी के लिए हमें वोट मत देना भाई, ये सभी चीजों का कोई उपयोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब ने वोट देना है केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के लिए वोट देना है। मुझे बताओ, जो दिल्ली में शराब बेचने के घोटाले में पकड़े गए हो, वो पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? उन पर भरोसा कर सकते हैं क्या? पंजाब का भविष्य पंजाब के युवाओं ने और माताओं ने बर्बाद नहीं होना दे। आपने सभी को देखा, कांग्रेस को देखा या नहीं देखा भाई? अरे जोर से बोलो, देखा या नहीं देखा? जोर से बोलो, देखा या नहीं देखा? आप पार्टी को देखा या नहीं देखा? बाकी सारों को देखा या नहीं देखा? अरे एक मौका 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम नशा मुक्त पंजाब बना कर देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां फौरी राजनीतिक भाषण करने के लिए नहीं आया। पंजाब वो सूबा है, मुगलों से लेकर आज तक देश की सुरक्षा पंजाब ने की। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर मुगलों के सामने कटवाकर देश भर के हिंदुओं को बचाने का काम किया। सर्वस्थानी गुरु गोविंद सिंह जी ने, दसम पिता ने अपना पूरा परिवार मुगलों से देश की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। और आज भी जब बोले सो निहाल का नारा लगता है, पाकिस्तानी सेना उल्टे पैर भाग जाती है, भाग जाती है। और भाइयों बहनों, वो वीर भूमि पंजाब, वो किसानों की भूमि पंजाब, वो खिलाड़ियों की भूमि पंजाब, वो रंगीला पंजाब,

0: आज इन्होंने चिट्टे के रंग से रंग दिया है। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं भाइयों बहनों, एक बार कमल के निशान पर बटन दबा दो, 31 दिसंबर 2029 को चट्टा बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। भाइयों बहनों, कुश्ती और कबड्डी खेलने वाले पंजाब का युवा जब बर्बाद होता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती। हमने नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया। मैं आज पूछने आया हूं मुख्यमंत्री पंजाब को, देश भर में 5000 से ज्यादा लोग एनडीपीएस में जेल में चले गए, जहां जब से ज्यादा नशा बिकता है वो पंजाब में, एक भी कार्यवाही इस साल में नहीं की है, एक को भी पीट एनडीपीएस में जेल में नहीं डाला। पीट एनडीपीएस वो कानून है जो मोदी जी ने बनाया है, जिसमें चट्टे के व्यापारी को बेल नहीं मिलती है, उसका कमाया हुआ सारा धन सरकार जब्त कर लेती है, मगर एक भी आदमी को पीट एनडीपीएस के तहत इन नशा का व्यापार करने वाली, बढ़ावा देने वाली आप पार्टी ने नहीं पकड़ा है। एनकोर बनाया, जहां मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया। मुझे बता दे भगवंत मान साहब, एनकोर की कितनी मीटिंगें की? 3 साल से मैं हर एक राज्य में एनकोर की मीटिंगें करा रहा हूं, पंजाब ने 3 साल में एक भी मीटिंग नहीं करी है, एक भी मीटिंग नहीं। और भाइयों बहनों, हमने एनसीबी की ऑफिस खोलने की बात करी, भगवंत मान साहब ने फोन कर ना बोला। मैंने बोला मान साहब आप भले ना बोलो, हम ऑनलाइन खोलेंगे और चुनाव के काउंटिंग के बाद मैं दूसरे दिन आकर यहां चट्टा मुक्त पंजाब का अभियान शुरू करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान जो उठाया है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यह अभियान पंजाब को बचाने का अभियान है। पंजाब में 1 ग्राम ड्रग हम बेचने भी नहीं देंगे और पंजाब से 1 ग्राम ड्रग भारत के दूसरे हिस्से में जाने भी नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तभी कर सकती है, तब नशा मुक्त पंजाब में विश्वास करने वाली हमारी हर मां, हर बहन, हर बच्ची, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे। भारतीय जनता पार्टी ये तभी कर सकती है जब पंजाब का युवा, एक एक युवा एक मौका नरेंद्र मोदी को दो, ये कहकर चट्टा मुक्त अभियान का, पंजाब के अभियान का समर्थन करें। मैं जालंधर से बड़े मनपूर्वक पंजाब की माताओं को, बहनों को, बेटियों को कहने आया हूं, हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर दिखाया है। हमने कश्मीर में कर दिखाया है, हमने नॉर्थ ईस्ट में कर दिखाया है, हमने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है, हमने आतंकवाद को समाप्त किया है। एक मौका दे दो, हम पंजाब से पंजाब में से चट्टे को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अंत में मैं आम सभा, विशाल जनसभा के माध्यम से पंजाब भर के लोगों को अपील करने आया हूं कि हमें चट्टा मुक्त पंजाब बनाने का एक मौका दीजिए, यही हमारी विनती है। मेरे साथ जरा जोर से बोलेगा, बोले सोनिहाल, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।
1: Home Minister Amit Shah there addressing a gathering in Jalandhar, sounding the poll bugle in Punjab, promising to make the state drug-free by 2029. Just give the BJP one chance is what the Home Minister said. He said no chitta will be there. That's how they refer the reference to drugs. No chitta in Punjab in 2029. He says under the Aam Aadmi Party government, they have absolutely failed on this front, saying that the leaders themselves are intoxicated. How will they make Punjab drug-free? He asked the people of the state to give BJP one chance, saying we've proven ourselves in Jammu and Kashmir. We have proven ourselves in the Northeast. Let's just listen into what he said.
0: 50 साल पुरानी नक्सल समस्या को तिथि देकर समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया और नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद को भी समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करा और अब बारी है चट्टा मुक्त पंजाब की। मैं फिर से एक बार पंजाब के युवाओं को और विशेषकर माताओं को कहने आया हूं, 31 दिसंबर 2029 के बाद आपके बच्चों को चट्टा उपलब्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जो नशे में धूत होकर खुद गुरुओं का ही अपमान न करे, वो चट्टे से पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है, पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये आप पार्टी पंजाब को नशा मुक्त कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पंजाब को नशे से मुक्त कर सकती है। भाइयों बहनों, आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, इंडस्ट्री के मुद्दे हैं, कानून और व्यवस्था के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के।
1: All right, Home Minister Amit Shah sounding the poll bugle there in Punjab. But moving on now to breaking news on the Fly Dubai flight that was landed, that saw an emergency landing in Saudi Arabia. We have visuals now. It's the first video from the Fly Dubai flight, which has created a huge controversy. Remember, initially it was thought that perhaps the plane was being hijacked. It had given out a distress signal. Later, it has now emerged that it was actually an altercation between two pilots. So take a look at this visual. This is the first video that has come from Fly Dubai. Lot of confusion over exactly what took place on this flight. It's a shocking story of an altercation between two pilots is what has now emerged, though more details are needed. This flight from Dubai to Tel Aviv was diverted to Saudi Arabia, and initially there was a distress signal that was triggered from the cockpit, which gave

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: More than 25 years later, the two have built one of India's most enduring political relationships. Modi has himself described Putin as a friend, and he has repeatedly spoken of the trust that defines the India-Russia relationship. That trust has mattered through changing geopolitical equations, from defense and energy to war in Ukraine and India's balancing act between Moscow and the West.
1: मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा में भी रशिया का और आपका विशेष महत्व रहा, क्योंकि 2001 में मैं पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बना और एक ही महीने में मुझे अटल जी के साथ रशिया आने का मौका मिला मॉस्को में, और विश्व के किसी नेता से मेरी एज ए मुख्यमंत्री पहली मुलाकात हुई तो आपसे हुई, और एक प्रकार से मेरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत आपसे और मॉस्को से हुई।
0: The relationship has also produced something rare in high-level diplomacy, comfort. Conversations that appear less scripted. Informal moments around otherwise tightly choreographed summits. And in September 2026, as Putin arrived in New Delhi for the BRICS summit, the old equation

0: मैं और विश्व के किसी नेता से मेरी एज ए मुख्यमंत्री पहली मुलाकात हुई तो आपसे की और एक प्रकार से मेरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत आपसे और मॉस्को से हुई।
1: The relationship has also produced something rare in high level diplomacy, comfort. Conversations that appear less scripted. Informal moments around otherwise tightly choreographed summits. And in September 2026, as Putin arrived in New Delhi for the BRICS summit, the old equation

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's that to me? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: यू वॉच अस, यू ट्रस्ट अस। नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। योर सपोर्ट हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनडीटीवी'स जर्नी एंड एट द आईटीए अवार्ड्स 2026 वी आर आस्किंग फॉर योर वोट। वोट फॉर एनडीटीवी एंड शो योर सपोर्ट फॉर द जर्नलिज्म यू ट्रस्ट। इट विल जस्ट टेक अ फ्यू मोमेंट्स एंड एवरी वोट मीन्स अ ग्रेट डील टू अस। सो डू वोट, शेयर द लिंक्स एंड चीयर for NDTV.
6: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters. मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: A healthier India doesn't happen in a day.
9: It starts with the health choices that we make every day.
10: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
8: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
11: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
10: One informed choice और एक healthier action.
8: Giving better health in more hands. Every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back. The Indian women's 400 meters relay team delivered a golden performance at the Asian Games. We just can't get enough of them. They overcame rain, a wet track to secure India's first athletics gold of the Games, beating Bahrain and China in a thrilling final. Gaurav Gala spoke to India's new golden girls. Listen in.
1: I have with me the golden girls of Indian athletics, the toast of India, the 4x400 meters winning quartet from the ongoing Asian Games in Japan. Kiran Pahal, MR Pavamma, Prachi Singh and Vithya Ramraj, thank you so much for joining NDTV all the way from Japan. First of all, I want to congratulate all of you for winning another gold medal in this event. And I want to start by asking all of you, ye question sabke liye hai, aap charo ke liye hai. What was going on in each of your minds during the last seconds of the race? Wo last bend, wo last 100 meters, jab Vithya finish line dekh sakti thi. Kya chal raha tha aap sabke dimag mein? What was going on in your minds?
2: Ye chal raha tha ki Vithya jaldi se aa ja. Hum usko bahut zyada aise bahut zyada bol rahe the ki jaldi jaldi, come on, let's go, let's go. फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास ही चले गए थे हम. वो ऑफिशियल भी हमें बोल रहे हैं कि पीछे जाओ पीछे जाओ, तो हम नहीं जा रहे. हम फिर भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं, कमोन कमोन कमोन. तो यही चल रहा था कि जल्दी आ जाए.
1: किरण आप बताइए.
3: सर भाग विद्या रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था हम चारों ही साथ भाग रहे हैं, क्योंकि अभी बताया जैसे प्राची दीदी ने कि हम बिल्कुल लाइन क्रॉस करने वाले थे. ऐसा लग रहा था कि हम ही विद्या को जाके और फास्ट भगा के लेके आए, और विद्या ने इतना अच्छा किया.

0: in next Los Angeles.
1: Now, you guys also told me कि कल आप लोग वापस इंडिया आ रहे हैं, तो आपका स्वागत तो होगा ही होगा. आप लोगों की तरफ से क्या प्लान है

0: ये प्लान है, उसके बाद बहुत सारे प्लान होंगे, वो अभी पता नहीं मुझे क्या क्या करना है।
1: चलिए तो खाना जो आप खाएंगी उसी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या खाने के लिए आप एकदम वेट कर रही हैं, क्या आपका फेवरेट है, क्या मम्मी बनाएंगी आपके लिए?
0: मेरी मम्मी चूरमा बनाती हैं, फिर मेरे को लस्सी बहुत पसंद है घर की, जो घर पे बनाते हैं, दूध पसंद है, तो वो सब चीज़, वो टेस्ट कहीं पे नहीं मिलता है, चाहे हम किधर भी चले जाएं, वो जो घर का टेस्ट है वो मम्मी के हाथ से ही बना हुआ मिलता है, तो ये सब चीज़ें मेरे को खानी है।
1: चलिए फैंटास्टिक। व्हाट अबाउट विथ्या, यू एंड पुवामा, व्हाट अबाउट, व्हाट आर योर प्लान्स वंस यू गाइज लैंड इन दिल्ली, एंड देन व्हेन आर
0: या
1: यू
0: आई एम
1: हेडिंग
0: ईगरली
1: बैक होम?
0: वेटिंग या आई एम ईगरली वेटिंग टू गो बैक होम। सो वंस आई एम बैक टू दिल्ली, माई हस्बैंड विल बी देयर, सो आफ्टर दैट देन अर्ली नेक्स्ट डे आई विल बी ट्रैवलिंग टू मैंगलोर टू माई होम टाउन। सो माई पेरेंट्स आर वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर माई नीस, लाइक इट्स नियरली 7 months आई हैव नॉट सीन देम। I'm eagerly waiting for my niece specially. So everyone are waiting, all the media, everyone have reached my home there. My parents are very busy and they're very proud that I've won medal. So even I am waiting, as Prachi said, even I am waiting घर का खाना खाने के लिए मैं बहुत तरस रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो पोलैंड में था तो साउथ इंडियन फूड तो कुछ नहीं मिलता था, कभी कभी हम लोग इधर उधर के इंडियन रेस्टोरेंट में मंगवाते थे, लेकिन घर का खाना तो घर का ही खाना ही होता है। सो सब कुछ एक लिस्ट है, लिस्ट रखा है मुझे क्या क्या चाहिए, बस जाना है खाना है और बस।
1: होम कुक फूड इज द लीस्ट दैट ऑल ऑफ यू डिजर्व। विद्या, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी देर आर फ्यू फोटोज ऑफ योर्स, तीनों मेडल आपने लिए हुए हैं और आपके एकदम फेस के पास, दोज पिक्चर्स आर गोइंग एब्सोल्युटली वायरल ऑल ओवर द कंट्री, हर कोई देख रहा है उन फोटोज को एंड दे गेटिंग इंस्पायर्ड एज वेल। थोड़ा बताइए वो कहाँ से आइडिया मिला ऐसे फोटो खिंचाने का?
2: ऐसे नहीं था, और एक इधर देर फोटोग्राफर कम एंड टोल्ड यू वुड ब्रिंग एवरी मेडल्स। आई सेड यस सर, इट्स वाज इन माय बैग, व्हाई यू कीप इट इन बैग, टेक इट एंड पुट इट इन योर शोल्डर, देन शो इट टू आवर कंट्री विद प्राउड। सो आई डिड दैट, द कैमरामैन टीच मी द पोस्ट, सो आई डिड इट। बट आई आफ्टर सीइंग द इंस्टाग्राम, इट्स वाज गोइंग सो सो लाइक्स, एवरी टाइम आई एम गेटिंग लाइक्स व्यूज, सो आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी दैट आई मेक 3 colors ऑफ मेडल्स इन दिस एशियन गेम्स।
1: नो नो फैंटास्टिक। और किरण, फाइनली आप बताइए, सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को लेके वेट कर रही हैं? सबने बताया कोई 7 साल 7 महीने से घर नहीं गया है, somebody wants to eat the चूरमा मेड बाय their मॉम, what are यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू? आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वेट कर रही हैं?
3: मुझे खाने का इतना नहीं है सर, अभी बताया नहीं है, मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा आया है, मेरे भाई को बेबी हुआ है, मतलब तो मैं उसको लेके ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी बस फोटो ही देखा है, मैं सबसे पहले उसको अपने हाथ में लेना चाहती हूँ, उसका मुझे ज्यादा खुशी होगा सर, खाने का तो मैं बाद में देखूंगी।
1: अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस टू यू किरण एंड टू योर ब्रदर, एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल 4 ऑफ यू फॉर मेकिंग द कंट्री प्राउड, फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल, फॉर यू नो शोइंग द पाथ for a lot of young girls who want to take up athletics, want to take up sports, that if you put your mind to it, if you put in the hard work, anything is possible. You guys have done it, and we wish you all the success in the future as well. Thank you so much for joining NDT.
0: Thank you, sir. Thank you.
3: Thank you, sir.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
1: You watch us, viewer, you trust us, and now your vote can speak for what we mean to you. Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
2: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
3: A healthier India doesn't happen in a day.
4: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom. Now, Minister Shivraj Singh Chauhan has hit out at the India Bloc opposition leaders and at Rahul Gandhi. Remember, the India Bloc met today. They hit out at the Chief Election Commissioner with Rahul Gandhi, even saying that Gyanesh Kumar works for the BJP, works for Prime Minister Modi. Now, Shivraj Singh Chauhan has countered this and said instead of apologizing for their mistakes, the leader of opposition is spreading lies and making allegations.
5: एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है कांग्रेस, इंडी गठबंधन में ही एंटी आईएनसी है, एंटी इनका, इनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हार की हताशा, अगर जीत गए तो लोकतंत्र जिंदाबाद, हार गए तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद, यह हार की हताशा है। सारी दुनिया भारत के लोकतंत्र को जानती है, ईवीएम को जानती है, ये तो हार का ठीकरा। देखिए, इसी ईवीएम से अलग अलग राज्यों में कर्नाटक में कैसे जीत गई कांग्रेस, तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जीत गई, हिमाचल में कैसे कांग्रेस जीत गई, ये केवल सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन सच वही है कि डेमोक्रेसी नहीं, डायनेस्टी बचाओ, एक परिवार को बचाओ। काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है, जनता का कोई भरोसा ही नहीं है। ये केवल सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन सच वही है कि डेमोक्रेसी नहीं, डायनेस्टी बचाओ, एक परिवार को बचाओ। अगर मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो कोई कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि वो ना आते। सच बात यह कि यूपी में ही कांग्रेस में और सपा में घमासान मची हुई है, अखिलेश नहीं आए, किसी और को भेज दिया।
4: All right, Shivraj Singh Chauhan, they're hitting out at the opposition leaders. The India Bloc met today and they're planning to address rallies and take this issue to the people as they continue their attack against the Chief Election Commissioner. Well, with that's it on this edition of NDTV Newsroom. Thanks so much for watching. Goodbye.

0: National Conference, PDP, NCP, Sharad Pawar, Supriya Sule was there representing the party. All the left parties were there. Shiv Sena, Uddhav Thackeray was also part of this meeting. Well, Aam Aadmi Party, BJD and DMK stayed away for this at this moment as far as this meeting is concerned. Remember, the BJD was not officially ever part of the India bloc, but it has also been now the opposition party. So the expectation was, will they all come together? Akhilesh Yadav was absent from the meeting, but he did put out a post on X with his support for the India bloc meeting. And the Samajwadi Party representatives were also there. Uddhav Thackeray also joined virtually. BJP has responded to these attacks. First, let's listen in to the reaction and the counter reaction, because this, ladies and gentlemen, is setting the tone for the next few months of the political temperatures across the country.
1: Sab parties ka opinion hai ki हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन. वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट द पीपल हु हैव डिस्ट्रॉयड इंडियन डेमोक्रेसी आर पनिश्ड. Doesn't matter how senior they are, who they are, Indian democracy is bigger than every single person in this country.
2: Hamara Bengal mein khali 92 lakhs loot kiya. Pura Hindustan mein 13 crore se jyada loot kiya. Aur unhone software bana ke yaron ko pura deadlock kar diya. Pura system ko khatra kar diya. इसको रहने का एक मिनट भी जरूरत नहीं है. अभी से अभी इसको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम जनता को भी विनती करते हैं. जो प्रोग्राम लिया है इंडियन अलायंस में खड़गे जी बताया, उसमें हम लोग सब शामिल होंगे. हम लोगों को तो घर से निकालने नहीं देता है. हम देखते हैं, हम लोगों को निकालने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे. हम राहुल जी को, हम खड़गे जी को बोलेंगे. हम और ज्यादा बोलने नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकतंत्र वापस आएंगे और डेमोक्रेसी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करेंगे. ये हमारा वादा है. इसके लिए जान अगर खतरे में जाएगा, वी आर रेडी टू डू इट.
3: एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है कांग्रेस, इंडी गठबंधन में ही एंटी आईएनसी है, एंटी इनका. इनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे. हार की हताशा, अगर जीत गए तो लोकतंत्र जिंदाबाद, हार गए तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद.
4: मिस्टेक्स हैव बीन पॉइंटेड आउट इन द पास्ट इन माधवपुरा इन कर्नाटका, आनंद इन महाराष्ट्र, इन हरियाणा, इन महाराष्ट्र. टू मेनी मिस्टेक्स हैव बीन पॉइंटेड आउट इन द पास्ट. द एसआईआर प्रोसेस इज डीपली फ्लॉड. इफ इट वॉज नॉट फ्लॉड, वाई शुड द इलेक्शन कमीशन meet again day before yesterday and change the process.
5: मैं कहता हूँ सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ, कांग्रेस कालियानाथ, ये तीनों पार्टियां बैठक में जाएं या ना जाएं, तीनों भाजपा की विरोधी पार्टियां, ये तीनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे 2027 का चुनाव, तब भी हारेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी. इसलिए ये किस बैठक में जा रहे हैं, किस बैठक में नहीं जा रहे, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं.
6: आप देखिएगा, जितने भी चुनाव हुए हैं ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर को बचाने के लिए, ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए पहले कानून बदल दिए जाते हैं. पहले चयन प्रक्रिया जो होती है, चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया जाता है. पोल जब खत्म होता है उस समय परसेंटेज कुछ और बताते हैं, अगले दिन कुछ और बताते हैं, तीसरे दिन कुछ और बताते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से ये बढ़ाते हैं. तो पहले से ही हम लोग ये बात को बोलते रहे.
0: So the India bloc at this moment, on the offensive as far as the election commissioner is concerned. Now, what are the six demands that have been put as a resolution of demands by the India bloc after the meeting of the India bloc? Pre-SIR roles for future elections. They yesterday also, after this Congress CWC, the Congress said that, this entire exercise should be stopped and we should go back to the roles which were there before the SIR process started.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: accusing the Congress party of betrayal, especially after Tamil Nadu election. So how is this going to work out? First up, some reactions.
1: पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन.
2: देखो, कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज ये हो गई है कि राजनीतिक ऊसर में रंगबाजी का मूसर बनती जा रही है. अब अगर कोई पार्टी राजनीतिक ऊसर में रंगबाजी का मूसर बनती जाए तो उनको भी इस बात का एहसास है कि जो छत्रप है उनकी छावनी में छेद हो चुका है और उनमें आपसी जो महत्वाकांक्षी मतभेद है वो चरम पर है. और छावनी में छेद और महत्वाकांक्षी मतभेद का नतीजा है कि आप झगड़ा भी दिखाई पड़ रहा है, झंझट भी दिखाई पड़ रहा है, झांसा भी दिखाई पड़ रहा है, झड़प भी दिखाई पड़ रही है. और इस तरह के झंझट, झांसे, झड़प का जो झुंड है और कन्फ्यूज़न का कुंड, कन्फ्लिक्ट का कुंड है, वो आज जो है वो ये गठबंधन बन गया है.
3: October 6 को ऑल अपोजिशन MPs मार्च टू इलेक्शन कमीशन, इसमें सारे राज्यसभा मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो, जो लोग इस देश में डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं उनको इसमें शामिल कर लेके हम ये मार्च करेंगे.
4: काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है, जनता का कोई भरोसा ही नहीं है. ये केवल सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन सच वही है कि डेमोक्रेसी नहीं, डायनेस्टी बचाओ, एक परिवार को बचाओ.
5: अभी तो खुल्ला खुल्ला हो गया कि भैनिश कुमार चोर है, डाकू है, वोट चोरी किया, ईवीएम मशीन जला दिया, ईवीएम मशीन हाईजैकिंग किया.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: This is a world between orders. Answer.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: गाइस मेरा तीसरा स्टोर, अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस?
2: जीवन स्मॉल फाइनेंस में।
4: स्मॉल
5: स्मॉल,
0: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: Asian girls who got us the gold medal in Aichi Nagoya Asian Games in the women's 4x400-meter relay event. Now, what is special about this gold medal is everyone, it seems, is talking about it right now. But if you saw them run on TV, you might have thought that, okay, it's just about 400 meters for an individual athlete. They pass on the baton and then four of them together finish the race, clock a certain time and claim the podium finish. If at all, they meet the set target.
1: Vitya ki achievement ko darasal मतलब मेरे एज ए कोच जब मैं उसको टीवी पे देख रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे जो वो लड़की जो वो काम कर रही थी.
0: It does look that simple, let me admit, but it is not that simple. So here at NDTV today, we are trying to put together, recreate a 4x400-meter relay for all of you to understand the effort that goes behind winning that gold medal that our girls got for us in Asian Games. I am currently at Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium and the track that you see around me is exactly those 400 meters that our runners will be covering. We've put together a team of four runners. They are, of course, not trained athletes. They come from different walks of life with different aspirations related to their fitness levels, and we are going to test that today. And once the race finishes, we'll try and find out from them what it takes in terms of preparing your body mentally and physically to finish a race like this. So let's understand, how does a middle distance runner prepare themselves, an athlete, an elite athlete? What is the mindset and how do coaches work with them? For that, I have with me Avnish Kumarji, who is the middle distance running coach with Sports Authority of India. He's currently posted here at Jawaharlal Nehru Stadium. But of course, Avnish ji has spent time with all of our leading track runners right now, including Vitya Ramraj, who's become the talk of the town, sir. First of all, आप क्या कन्वे करना चाहेंगे हमारी गोल्डन गर्ल्स को? क्या जबरदस्त दौड़ी हैं लड़कियां? कह रहे हैं कि वो दौड़ी नहीं है, वो उड़ी है लिटरली ट्रैक पर.
1: जो ये अचीवमेंट है बहुत ही शानदार अचीवमेंट है और पूरी कंट्री को जितनी जो खुशी है हम सब लोगों को, और मैं तो एज ए कोच जो मतलब मेरे को जो अंदर से महसूस हो रहा, मैं शब्दों में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जो ये अचीवमेंट है बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सब लोगों को लगता है कि 400 मीटर देखने में तो छोटा है, लेकिन इसके पीछे साल दर साल की मेहनत है, जो उन बच्चों का डेडिकेशन है, जो एथलीट्स है और उनकी फिटनेस लेवल शानदार है, कमाल की अचीवमेंट है.
0: अवनीश जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 400 मीटर देखने में टीवी पे बड़ा आसान लगता है, बट इज इट द राइट असेसमेंट ऑफ अ 400 मीटर लैप? व्हाट ऑल इज इट रिक्वायर्ड टू रन दैट 400 मीटर्स?
1: 400 मीटर दौड़ने के लिए देखो उसमें स्टेजेस हैं. सबसे पहले आपको स्टार्ट लेना होता है, उसके बाद में स्टार्ट के बाद में एक्सीलेशन फेस आता है, एक्सीलेशन के बाद में मेंटेनेंस फेस है, मेंटेनेंस के बाद में आपको जब मेंटेनेंस फेस आपका होगा वहाँ आपको लैक्टिक एसिड के साथ दौड़ना है, और लैक्टिक टॉलरेंस पावर जो होगी उसकी, वो जिसके अंदर ज़्यादा होगी वही उसको ज़्यादा एफर्ट के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में पेस मेंटेन करते हुए दौड़ पाएगा. और ये सब डिपेंड करता है कि इंडोरेंस लेवल के ऊपर, और इंडोरेंस लेवल कोई 1, 2, 3, 4 दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, ये साल दर साल मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है. तो बहुत मेहनत का काम है 400 मीटर, कोई आसान काम नहीं है, और लड़कियों ने बड़ा शानदार काम किया है.
0: जो हमने देखा कि शुरुआत जो किरण ने हमें दिलाई, उसके बाद पूवमा और प्राची ने अपना रोल अदा किया सेकेंड और थर्ड लेग में, लेकिन विद्या ने फोर्थ और फाइनल लेग में जाके जिस तरह से चाइनीज़ और बहरीन के एथलीट्स को पछाड़ते हुए लीड भी ले ली लास्ट में, और गोल्ड मेडल को मतलब बहुत मुश्किल से नहीं, बड़ी आसानी से फिर हासिल करके दिखाया, विद्या के उस एफर्ट पर आप क्या बोलेंगे? और आखिरी के 100 मीटर की स्प्रिंट, वो कितनी ज़रूरी है एक 400 मीटर लैप के लिए?
1: विद्या की अचीवमेंट को दरअसल मतलब मेरे एज ए कोच जब मैं उसको टीवी पे देख रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जो वो लड़की जो वो काम कर रही थी, कमाल का उसने काम किया है. अच्छा, विद्या के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ हम ब्रिक्स 2023 में हम ब्रिक्स गेम में गए थे, वहाँ पे विद्या हमारी टीम मेंबर थी, और विद्या को उस टाइम पे देख के ही हमें लगा था कि ये लड़की आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, ये लड़की है. और जो उसने काम किया है, जो उसने जिस किस्म का उसका एफर्ट था, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, वो कहीं भी रेस स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग लाइन तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो स्लो डाउन हो रही है. और उसने अपोनेंट के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो उसको समझ नहीं आया ये क्या किया. उन टीमों के साथ कम्पीट करना और गोल्ड लेके आना, और गोल्ड भी ऐसे लेके आना कि कमाल के, हाँ देखते रह जाए बिल्कुल।
0: अवनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी एंड ऑफ कोर्स एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम एंड दिस इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर, व्हाट लुक्स लाइक जस्ट अ 400 मीटर लैप इज नॉट जस्ट दैट, देयर इज एफर्ट दैट गोज बिहाइंड द सीन्स, लैप आफ्टर लैप, रन आफ्टर रन, ड्रिल आफ्टर ड्रिल दैट ऑल ऑफ आर एथलीट्स आर पुटिंग टुगेदर टू डिलीवर द गोल्ड दैट वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ टुडे।

0: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
1: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
2: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
0: One informed choice और एक healthier action.
1: Giving better health in more hands every day.